0: ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਏ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0200-3400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मघर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप्स तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक।
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
3: नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। लिसनिंग टू कंट्रीज मोस्ट पॉपुलर रेडियो रेडियो सबराम 94.7 FM।
4: Take your business beyond walls and straight to your audience. Sabrong Radio now comes live to your location, bringing energy, excitement,

0: Calgary, Airdrie, Chestermere, Cochrane, or tuning in from Okotoks, High River, Strathmore, and beyond. We are one sound, one family, one Sebring. Feel the rhythm, celebrate the culture, and stay connected with voices that matter. More events, more stories, more celebrations are on the way, only on Sebring Radio, your voice across every mile. Visit our official website, www.sebring.ca.
1: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਬਰੰਗ.ca ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਥਰੂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 403-400-0203 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ sabrangradio.ca ਜਾਂ sabrang.ca ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਈ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਕੀ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੈਨਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੈਨਜੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜੈਨਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ
2: ہمارے پیروں کے نیچے سے کسی نے زمین کھینچ لی ہو سر کے اوپر سے چھت ختم ہو گئی ہو ہم اپنے ماں باپ سے لڑ کر یہاں پر پڑھنے آ رہے ہیں پھر جو ہم آ رہے ہیں سماج سے لڑ رہے ہیں پھر کہ دنیا بھر کے لوگ ہمیں کیا کیا کہتے ہیں
3: شادیاں کروا دیں گے ماں باپ ہماری کچھ پڑھائی وڑھائی نہیں کروائیں گے
4: جتنے بھی اسٹاف کے لوگ ہیں سب بے چین ہیں پریشان ہیں
5: سن کے مطلب مجھے راتوں کو نیند نہیں آ رہی
6: اتر پردیش کا رام پور साक्षरता के मामले में प्रदेश के सबसे पिछड़े जिलों में से एक इसी जिले में आज से दो दशक पहले मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की नींव रखी गई इस यूनिवर्सिटी में फिलहाल तकरीबन 3000 छात्र पढ़ाई करते हैं 100 के तकरीबन टीचिंग स्टाफ हैं और 100 के ही तकरीबन नॉन टीचिंग स्टाफ हाल में प्रशासन के एक फैसले के बाद यहाँ पढ़ने वाले छात्रों के सामने अपनी पढ़ाई बीच में ही छूट जाने का डर सता रहा है और यहाँ काम करने वाले टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के सामने खड़ा है संकट अपने रोजगार छिन जाने का
7: जब तक सूरज चांद रहेगा इस यूनिवर्सिटी के ऊपर कोई भी कार्रवाई अगर होती है तो ना केवल यूनिवर्सिटी के ऊपर होगी बल्कि हमारे फ्यूचर के ऊपर होगी हमारे पेरेंट्स के उस विश्वास के ऊपर होगी अगर बुलडोजर चलाना है तो पहले हम पे चला दीजिए मैं बस यही बोलूंगी ना हम रहेंगे और ना ही हम बोलेंगे आज जब है तो बैठे हैं यहाँ क्लास से रोड तक का सफर तय करवा दिया इस ऑर्डर ने
4: जितने भी स्टाफ के लोग हैं सब बेचैन हैं परेशान हैं हर किसी को अपने भविष्य के बारे में अपने मुस्तकबिल के बारे में दिख रहा है कि अगर भगवान ना करे कि यूनिवर्सिटी को कुछ होता है तो फिर उनको काफी दिन तक उसको परेशानी उठाना पड़ सकती है
5: मेरे लिए तो बहुत मतलब दुख भरी बात भी है ये सुन के मतलब मुझे रातों को नींद नहीं आ रही मतलब नींद नहीं आती माइंड में वही रहता है पर इंशाल्लाह हम अल्लाह से दुआ करेंगे इस यूनिवर्सिटी को सेव यूनिवर्सिटी सेव फ्यूचर बच्चों का भविष्य है हम लोगों की यूनिवर्सिटी हम सब फीमेल्स हैं यहाँ पे आते हैं और चले जाते हैं और शाम को अपने घर पे बच्चों को भी देख लेते हैं कि रामपुर में है तो रामपुर हमारी यूनिवर्सिटी है तो हम अब बाहर जाएंगे हम लोग तो बाहर से हम डेली अप डाउन नहीं कर सकते हैं तो वो ये मेरे लिए बहुत दुख की बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिए
8: रामपुर विकास प्राधिकरण ने जौहर यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतों को गिराने का आदेश पारित किया है प्राधिकरण का दावा है कि इन भवनों का निर्माण बिना स्वीकृत नक्शा पास कराए किया गया
9: ये कुछ दिन पहले संज्ञान में आया था कि जौहर विश्वविद्यालय के अंदर जो निर्माण है वो नियमानुसार नहीं हुआ है इसकी जांच कराई गई थी और उस क्रम में उनके ध्वस्तीकरण का आदेश जो पारित कर दिया निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद आरडीए के द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर दी
1: गई जौहर यूनिवर्सिटी की गलबात जिदे बारे हुन चर्चा चल रही है भी उन्होंने ढान की गलबात की जा रही है

0: ਕਈ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਾ ਦਾ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਣਦੇ ਆ ਵੀ ਖਬਰ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ।
1: ਕਿ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾ ਇਸਤੀਫਾ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਉਨਕਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਬਦਲ ਦਿਆ ਜਾਏ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੂਸਰਾ ਕਰ ਦਿਆ ਜਾਏ, सीजेपी के सामने ऑफर रखा गया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, सीजेपी इस्तीफे पर अड़ी रही और अंत में जाकर 25 जुलाई की दोपहर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। नमस्ते, मेरा नाम दीपक तेंगुरिया है, आप इंडियन एक्सप्रेस हिंदी देख रहे हैं। मेरे हाथ में हमारी डिप्टी एडिटर लिज मैथ्यू की स्पेशल रिपोर्ट है। इसके मुताबिक सरकार और सीजेपी के दो प्रवक्ताओं यानी आशुतोष रांका और सौरव दास के बीच में जब बातचीत चल रही थी, उस बीच में जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा, जो सरकार की तरफ से दो मंत्री नेगोशिएट करने आए थे, उन्होंने ये मांग रखी कि अगर हम पोर्टफोलियो चेंज कर दें धर्मेंद्र प्रधान का, यानी उनकी जगह एक नया शिक्षा मंत्री आ जाए और धर्मेंद्र प्रधान को किसी और मंत्रालय में भेज दिया जाए, तो क्या प्रदर्शनकारी मान जाएंगे। लेकिन सीजेपी की तरफ से ये मांग रिजेक्ट कर दी गई, उन्होंने कहा नहीं, धर्मेंद्र प्रधान को हटाना ही होगा, और तब जाकर सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान को हटाया। हालांकि इससे पहले दो मांगे उनकी मान ली गई थी। कौन सी दो मांगे थी? पहला ये कि नीट और रीनीट के बीच में जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया है उनको मुआवजा दिया जाए, और दूसरा जिन भी प्रोटेस्टर्स पर FIR की गई है वो FIR विड्रॉ की जाए। ये दो मांगे मान ली गई थी। इस बीच में ये भी बात हुई और ये भी ऑफर किया गया कि हम धर्मेंद्र प्रधान का मंत्रालय बदल देते हैं, उनकी जगह नया शिक्षा मंत्री आ जाएगा। और ये भी सरकार की तरफ से कहा गया कि जो मंत्रालय बदलने का जो पोर्टफोलियो जो कॉल है वो प्रेरोगेटिव, वो विशेषाधिकार प्रधानमंत्री का होता है, हम मंत्रालय बदल देते हैं और एक नया शिक्षा मंत्री आ जाएगा, लेकिन ये मांग नहीं मानेगी। दर्शक यहां ध्यान दें कि 20 जुलाई, 24 जुलाई और 25 जुलाई इन तीन मौकों पर आशुतोष रांका, सौरव दास और कैबिनेट की तरफ से, पहली मुलाकात में तो जेपी नड्डा थे और उसके बाद वाली मुलाकातों में जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा दोनों थे, ये मुलाकात हुई।
0: सो ये मोटी मोटी गल जी है जी प्रोग्राम की होगी, हूँ तोड़न की हटा दी गलों तो बाद बना की गलबात आ जाए, क्योंकि कानी उन्होंने कानी जो प्राइम मिनिस्टर ने अपने उन्होंने पाया कि भी गोडी हो जरा इंटरनेशनल ब्रिज की, मैं पहले भी वैसे गलबात करती भी 300 बिलियन डॉलर का वर्थ जरा ट्रेड करता बिटवीन ओंटेरियो एंड मिशीगन हर साल। सो 300 बिलियन डॉलर का बिजनेस जरा उन्होंने होंगे, तो इस पुल के बनने के नाल जरा इस पुल के थ्रू भी काफ़ी बिजनेस होया करेगा। वह कहें भी एक ग्रेट कनेडियन के नाँ के उत्ते बनाया गया गोडी होवे जिन्ह का नाँ सी जी, दो साल तो टू डेकेड्स ऑफ कोलैबोरेशन ते जनरेशनल इन्वेस्टमेंट जी की गई है ताकि साडा जरा इकनोमिक फ्यूचर जरा सिक्योर किया गए, तो हूँ इट्स ऑफिशियली ओपन हो गया। तो उस तो इलावा एक होर जरा मैसेज तो लिखा भी गोडी होवे फैमिली जी है वो पहली होएगी जी कि क्रॉस करेगी ब्रिज, बेसिकली किया गया क्योंकि अज खुल गया तो उन्होंने मौका भी मिल गया। ये वन सगेन दस दिए भी अमरजीत सोही उन्होंने भी ये मैसेज पाया भी उन्होंने प्रेजेंस के शुरुआत की गई सी। हुसैन इब्राहिम ने भी पाया ये एक मैसेज, क्योंकि मेरे काफ़ी जड़े अलग अलग नैटवर्क के दोस्त ने वो ये मैसेज पा रहे हैं, बट ये भी बहुत वधिया प्रोग्राम है जी। सो आई होप अज का प्रोग्राम तुसीं पसंद किया होगा, 8 बज चुके ने ते प्रोग्राम समाप्त करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एंड शब्बा खैर टू ऑल, कल नूं फिर मिलेंगे 7 बजे तो लैके 8 बजे तक। थैंक यू।
2: द टाइम इज 8 PM। यू आर लिसनिंग टू फेयरचाइल्ड रेडियो CHKF FM 94.7, अ मल्टीकल्चरल रेडियो स्टेशन इन कैलगरी।

0: हाई क्वालिटी वालियां फोटो चाहिदियां ने तां फिर पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा कर लो। किसी भी उम्र दियां दो पासपोर्ट फोटो सिर्फ $7 विच तुहाडे कारोबार जां सोशल मीडिया प्रोफाइल लई प्रोफेशनल हेडशॉट, सुंदर फैमिली फोटो जो सदा लई यादगार बन जावे। साडे तजर्बेकार फोटोग्राफर लेटेस्ट इक्विपमेंट वरतदे हन तां जो तुहाडियां फोटोआं बिल्कुल परफेक्ट आउण। ए सब कुछ बिल्कुल वाजिब प्राइस ते। पासपोर्ट तो लैके हेडशॉट अते परिवारिक पोर्ट्रेट तक असी सब कुछ करदे हां। पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा करो। तुहाडी फोटोग्राफी दी हर लोड़ लई कॉल करो 403-947-0060 403-947-0060 जां आओ यूनिट 530-669 सवाना बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। पिक्सल फोटो स्टूडियो जिंदगी दे पलां नूं कैद करदे होए इक फोटो इक वार।
1: ग्रोसरी खरीदने लई हमेशा याद रखो कैलगरी दा मशहूर सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर।
2: ताजियां सब्जियां, फल फ्रूट, दालां, मसाले ते बर्तना तो इलावा घरां दी वरतों दा हर समान मिलेगा। कीमतां कट ते क्वालिटी A1।
1: जानिया पछानिया नाम है सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर।
2: तुहाडी ग्रोसरी दियां लोड़ां पूरियां करन लई सांझा पंजाब दियां कैलगरी दे विच हन 6 लोकेशनां। हफ्ते दे 7 दिन सवेरे 9 बजे तो लैके शाम 9 बजे तक।
1: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर, पहली लोकेशन 331-3690 वेस्ट विंड ड्राइव,
2: दूजी लोकेशन 117-7770 एवेन्यू,
1: तीजी लोकेशन 570-6520 फाल्कन रिज बुलेवार्ड,
2: चौथी लोकेशन 606 सिटी स्केप स्क्वायर,
1: पांचवी लोकेशन 3150-235 रेड एम्बर्स वे,
2: छेवी लोकेशन 445 कैरिंगटन बुलेवार्ड नॉर्थ वेस्ट कैलगरी।
1: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर दियां 6 लोकेशनां दा सांझा फोन नंबर
2: 403-835-2222। ट्रक चाड़न लई थब्बा नोटां दा लगदा है। होर ता होर ट्रकां दी इंश्योरेंस बंदे दा धुआं कढ दिंदी है ते दुहाइयां फिर बंदा पौंदा है।
0: सुनो सुनो सुनो, ट्रकिंग कंपनियां दे मालक ते ट्रक ओनर जरा ध्यान नाल सुनो। ट्रकां दी सस्ती इंश्योरेंस दा हल हुण आ गया। ट्रकां वास्ते इंश्योरेंस दे रेट लैण लई सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा नाल 587-832-1208 ते संपर्क करो। तजर्बेकार इंश्योरेंस ब्रोकर मानस पहुजा ते उहनां दी टीम प्रोफेशनल सेवावां दिंदे हन। बेस्ट ट्रक इंश्योरेंस रेट्स लई याद रखो सोनिक इंश्योरेंस 587-832-1208।
3: रेडियो सुरसंगम 94.7 FM सुन रहे सारे श्रोतियां नूं कुलदीप सिंह वल्लों सत श्री अकाल जी। अज दिन मंगलवार जुलाई महीने की 28 तरीक सन 2026 4:09 हो रहे ने। हुण तो लैके 5 बजे तक मेरा ते आप जी का साथ। 5 बजे सवलीन कौर जसड़ प्रोग्राम पेश करनगे, 8 बजे जलाल जी प्रोग्राम लैके हाजिर हो जाएंगे, तो 9 बजे पंजाब तो जतेंद्र पन्नू जी नाल असीं प्रोग्राम पेश करांगे जी। ये साढ़े अज के बाकी रहिंदे प्रोग्राम ते उन्हां दा वेरवा। अज के इस प्रोग्राम विच हमेशा की तरह खबरां ते चर्चा करांगे ते प्रोग्राम विच सब तो पहला मौसम की गल कर लैंदे हां। इस वेले 29 डिग्री सैल्सियस टैंपरेचर है। रात नूं जो टैंपरेचर है 13 डिग्री सैल्सियस तक, कल नूं दिन वेले 27 ते घट तो घट 13, उस तो अगले दिन भी 27 ते 15, उस तो अगले दिन 31 डिग्री सैल्सियस शुक्रवार नूं ते 15 डिग्री सैल्सियस मिनिमम हो सकता है। ये मौसम दा हाल अज दा ते आउण वाले दिनां दा। जरा खबरां ते झात मार लईए कि कहड़ियां खबरां ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ

0: सकते हो अपनी पसंद की फ्लोरिंग का समान। फ्लोरिंग घर का होवे या होवे कमर्शियल, नवा लवाना होवे या होवे रेनोवेशन का प्लान, कारपेट, हार्डवुड, लेमिनेट, टाइल ते होर शानदार फ्लोरिंग दे डिजाइनर नाल भरिया है इना दा शोरूम। अज ही इना दे शोरूम ते पुजो 2935 19th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी, कैलगरी कारपेट एम्पायर। फोन नंबर 403-510-1515 2935 19th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: ग्रोसरी खरीदने लई हमेशा याद रखो कैलगरी दा मशहूर सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर।
2: ताजियां सब्जियां, फल फ्रूट, दालां, मसाले ते बर्तना तो इलावा घरां दी वरतों दा हर समान मिलेगा। कीमतां कट ते क्वालिटी A1।
1: जानिया पछाणिया नाम है सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर।
2: तुहाडी ग्रोसरी दीआं लोड़ां पूरीआं करन लई सांझा पंजाब दीआं कैलगरी दे विच हन 6 लोकेशनां। हफ्ते दे 7 दिन सवेरे 9 बजे तो लैके शाम 9 बजे तक।
1: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर, पहली लोकेशन 331-3690 वेस्टमिंस ड्राइव,
2: दूजी लोकेशन 117-7780 एवेन्यू,
1: तीजी लोकेशन 570-6520 फाल्कन रिज बुलेवार्ड,
2: चौथी लोकेशन 606 सिटी स्केप स्क्योर,
1: पांचवी लोकेशन 3150-235 रेड एम्बर्स वे,
2: छेवीं लोकेशन 445 कैरिंगटन बुलेवार्ड नॉर्थ वेस्ट कैलगरी।
1: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर दीआं 6 लोकेशनां दा सांझा फोन नंबर
2: 403-835-2222।

0: Valley 4036162445।
1: ओहो, आज फेर नहीं लोड मिलिया।
2: की होया?
1: बस पूछना, इंश्योरेंस कंफर्मेशन नहीं आई टाइम पे। ते हुन फेर एक दिन वेट करनी पैनी है। ते बच्चियां नु फेर नहीं मिल होना दो दिन।
2: ओहो, रह गए ना फेर पिछे। मैं सुनिया है सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा अते रमन वड़ैच ते उना दी टीम इंश्योरेंस कंफर्मेशन बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा दिंदी है। ते ओ ता पोर्टल भी सेट कर दिंदे ने ताकि तुसी आप ही कंफर्मेशन दे सको, बशर्ते तुहाडी इंश्योरेंस एक्टिव है। तुसी आज ही उना नु फोन करो ते जल्दी जल्दी गाल करके कोई हल लब्बो ताकि अगली बारी तुसी कार टाइम ते आ सको ते बच्चा नाल टाइम भी स्पेंड कर सको। फोन नंबर है मानस पहुजा 5878321208 या रमन वड़ैच 7807530001। सोनिक इंश्योरेंस।
3: हेलो गोपी, शुक्र है तू फोन चुक लिया। जिद्दण दा नवा घर लिया, सज्जन मित्र फोन चुकणो भी गए।
4: ओ सारे डरदे नहीं चकदे, उनां नूं लगदा तू मूविंग ली कहूंगा। कौन इन्ने भारे समान नूं हथ पावे।
3: ओ नहीं भरावा, मैं इंज नहीं करदा। आपां ते हर वार स्टार मूविंग वालियां नूं इक फोन करीदा। ओ बहुत वधिया तरीके नाल सारे घर दा समान सही सलामत बिना किसी झंझट दे मूव कर जांदे आ।
5: अपने घर जां ऑफिस दा समान मूव कराउणा होवे तां स्टार मूविंग दे मलकीत सिंह जी नूं अज ही कॉल करो 4038701790 403-870-1790। स्टार मूवी।